हर दिन भारतीय संगीत का ये रागम डीटीएच चैनल है। लीजिए सुनिए आलोक गांगुली के स्वर में ब्रह्मानंद की ये रचना, सुनो सुनो धन से प्यारा।

0: This is Ragam 27 DTH Indian Classical Music Channel.
1: अब आप सुनेंगे श्रीमती जयश्री पाटनेकर का हिंदुस्तानी गायन राग सावनी. ख्याल विलंबित झपताल देव देव ध्रुत तीन ताल में आज माग जावत.
2: लिसन टू हिंदुस्तानी वोकल रिसाइटल बाय श्रीमती जयश्री पाटनेकर. राग सावनी. ख्याल विलंबित झपताल देव देव ध्रुत तीन ताल आज माग जावत.

0: ये है रागम 24/7 डीटीएच एनी टाइम इंडियन म्यूजिक। आप सुन रहे हैं श्रीमती जयश्री पाटनेकर का गायन। आपके साथ तब पर श्री हनुमंत कुमार कोड़गानूर, हारमोनियम पर श्री डी कुमार दास साथ दे रहे हैं। कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब आप सुनेंगे राग केदार, ख्याल विलंबित तिलवाड़ा ताल में जोगी रावला, द्रुत तीन ताल संया मोरा रे।
1: This is Ragam 24/7 DTH Anytime Indian Music. You are listening to vocal recital by Srimati Jayashree Patnekar. She is accompanied on tabla by Shri Hanumant Kumar Kodganur, harmonium by Shri D Kumar Das. Continuing the concert, now listen to Rag Kedar. Khyal Vilambit Tilwada Jogi Ravala, Dhrit Tintal Sanya Morare.

0: अब तक आप सुन रहे थे श्रीमती जयश्री पाटनेकर हिंदुस्तानी गायन। आपके साथ तबले पर श्री हनुमंत कुमार कोडगानूर, हारमोनियम पर श्री डी कुमारदास साथ दे रहे थे। यह कार्यक्रम आकाशवाणी धारवाड़ द्वारा 24x7 DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक पर पेश किया गया।
1: यू आर लिसनिंग टू वोकल रिसाइटल बाय श्रीमती जयश्री पाटनेकर। शी वॉज एकम्पनीड ऑन तबला बाय श्री हनुमंत कुमार कोडगानूर एंड हारमोनियम बाय डी कुमार दास। दिस प्रोग्राम वॉज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ऑल इंडिया रेडियो धारवाड़ फॉर रागम 24x7 DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: यह रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत लीजिए पेश है राग नट भैरव पर ख्याल. कलाकार हैं ओर्घ्यो चक्रवर्ती. आपके साथ तबले पर हैं सुब्रतो गुप्ता और हारमोनियम पर है देवाशीष अधिकारी. तो लीजिए प्रस्तुत है राग नट भैरव पर ख्याल. कलाकार हैं ओर्घ्यो चक्रवर्ती.
2: This is Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music. This morning we present a Hindustani vocal recital followed by a Hindustani instrumental recital. Listen first to Khayal in the rag Nat Bhairav. Our artist is Orgho Chakraborty. Accompanying our artist on the tabla is Shubroto Gupto and on the harmonium is Devashish Odhikari. Listen now to Khayal in the rag Nat Bhairav, our artist Orgho Chakraborty.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग नट भैरव पर ख्याल सुन रहे थे। कलाकार थे औरघ्यो चक्रवर्ती। आपके साथ तबले पर थे सुब्रतो गुप्ता और हारमोनियम पर थे देवाशीष अधिकारी। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम को जारी रखते हुए लीजिए प्रस्तुत है राग भटियार पर सितार वादन। कलाकार हैं कौशिक बसाक। आपके साथ तबले पर हैं इंद्रनील भादुड़ी। तो लीजिए प्रस्तुत है राग भटियार पर सितार वादन। कलाकार हैं कौशिक बसाक।
1: You were listening to Khayal in the Rag Natbhairav. Our artist was Orgho Chakraborty.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग भटियार पर सितार वादन सुन रहे थे। कलाकार थे कौशिक बसाक। आपके साथ तबले पर थे इंद्रनील भादुड़ी। ये आकाशवाणी कोलकाता केंद्र की भेंट थी। ये है रागम, 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: यू वर लिसनिंग टू अ सितार रिसाइटल इन द राग भटियार। आवर आर्टिस्ट वॉज कौशिक बोशाक। Accompanying our artist on the tabla was Indranil Bhaduri. This program was earlier recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: नमस्कार श्रोताओं, रागम DTH पर 2400 घंटे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। शास्त्रीय संगीत के आज के इस कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं विदुषी किशोरी आमोणकर के गायन से। आपने प्रस्तुत किया है राग बसंत बहार। विलंबित ख्याल 3 ताल में निबद्ध है और ख्याल के बोल है बरजो ना मान। दूता ख्याल 3 ताल में निबद्ध है और बोल है मानरे मानरे पिया मोरी बिनती। आपके साथ तबले पर है गोपाल वाड़ेगांवकर, हारमोनियम पर है बबनराव आठले। सुनते हैं राग बसंत बहार, कलाकार विदुषी किशोरी आमोणकर।

0: श्रोताओं, हम सुन रहे थे विदुषी किशोरी अमोणकर का गाया हुआ राग बसंत बहार। आपके साथ तबले पर थे गोपाल वाडेगांवकर और हारमोनियम पर थे बबन राव आठले।
1: कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब सुनते हैं विदुषी किशोरी अमोणकर का गाया हुआ राग बहादुरी तोड़ी। विलंबित ख्याल तीन ताल में निबद्ध है, बोल है ए महादेव पार्वतीपति। तबले पर साथ कर रहे गोपाल वाडेगांवकर, हारमोनियम पर बबन राव आठले। आइए सुनते हैं विदुषी किशोरी अमोणकर का गाया हुआ राग बहादुरी तोड़ी।

अभी अपने विदुषी किशोर यमोनकर का गाया हुआ राग बहादुरी तोड़ी सुना। तबले पर साथ की थी गोपाल वाड़ेगांवकर ने, हारमोनियम पर बबन राव आठले। रागम 24/7 डीटीएच के लिए ये आकाशवाणी पुणे की प्रस्तुति थी। आप सुन रहे हैं रागम 24/7 डीटीएच चैनल पर भारतीय संगीत हर पल हर समय।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है पंडित अजय प्रसन्ना का बांसुरी वादन. पहले प्रस्तुत है रूपक ताल और तीन ताल में राग चंद्रप्रभा. तबले पर आपकी संगति की है उस्ताद रफीउद्दीन साबरी ने.
2: This is a Ragam channel of All India Radio. We now present a flute recital by Pandit Ajay Prasanna. First listen to Rag Chandraprabha in Rupak Tal and Teen Tal. He is accompanied by Ustad Rafiuddin Sabri on Tabla.

0: अभी आप पंडित अजय प्रसन्ना का बांसुरी पर बजाया राग चंद्रप्रभा सुन रहे थे और अब सुनिए तीन ताल में राग शंख ध्वनि। तबले पर आपकी संगति की है उस्ताद रफीउद्दीन सावरी ने।
1: यू आर लिसनिंग टू अ फ्लूट रिसाइटल बाय पंडित अजय प्रसन्ना। नाउ लिसन टू राग शंख ध्वनि इन तीन ताल इज अकॉम्पनीड बाय उस्ताद रफीउद्दीन सावरी ऑन तबला।

0: अभी आप पंडित अजय प्रसन्ना का बांसुरी पर बजाया राग शंख ध्वनि सुन रहे थे और लीजिए अब सुनिए धुन राग मिश्र खमाज में। तबले पर आपकी संगति की है उस्ताद रफीउद्दीन साबरी ने।
1: यू आर लिसनिंग टू अ फ्लूट रिसाइटल बाय पंडित अजय प्रसन्ना इन राग शंख ध्वनि। नाउ लिसन टू धुन इन राग मिश्र खमाज। इज अकंपनीड बाय उस्ताद रफीउद्दीन साबरी ऑन तबला।

0: अभी आप पंडित अजय प्रसन्ना का बांसुरी वादन सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी उस्ताद रफीउद्दीन साबरी ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: यू वर लिसनिंग टू अ फ्लूट रिसाइटल बाय पंडित अजय प्रसन्ना। ही वॉज अकम्पनीड बाय उस्ताद रफीउद्दीन साबरी ऑन तबला। दिस प्रोग्राम इज अ प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली।

निबद्ध है। द्रुतगत एक ताल और तीन ताल में निबद्ध है। सात संगत है। तबले पर विनायक फाटक। आइए सुनते हैं मिलिंद तुयाणकर का जल तरंग वादन, राग चंद्रकंस।

अभी अपने मिलिंद तुरानकर का जल तरंग वादन सुना। साथ संगत की थी तबले पर विनायक फाटक ने। कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब सुनते हैं उस्ताद हमीद खान का सारंगी वादन। प्रारंभ में राग सरस्वती, विलंबित गत एक ताल में निबद्ध है, द्रुत गत तीन ताल में निबद्ध है। साथ संगत है तबले पर विठ्ठल क्षीरसागर। आइए सुनते हैं उस्ताद हमीद खान का सारंगी वादन।

अभी आपने उस्ताद हमीद खान का सारंगी वादन सुना, आइए सुनते हैं उस्ताद हमीद खान ने सारंगी पर बजाई पीलू धुन। साथ संगत कर रहे हैं तबले पर विठ्ठल क्षीरसागर।

अभी आपने उस्ताद हमीद खान का सारंगी वादन सुना। साथ संगत की थी तबले पर विट्ठल क्षीरसागर ने। रागम 24/7 DTH के लिए ये आकाशवाणी पुणे की प्रस्तुति थी। आप सुन रहे हैं रागम 24/7 DTH चैनल पर भारतीय संगीत हर पल हर समय।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत लीजिए प्रस्तुत है राग श्याम कल्याण पर बांसुरी वादन. कलाकार हैं गोरा चांद बाग. आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं सुब्रतो गुप्ता.
2: This evening we present Hindustani instrumental recitals. Listen first to a flute recital in the rag Shyam Kalyan. Our artist is Gora Chand Bagh. Accompanying our artist on the tabla is Subrato Gupto.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम को जारी रखते हुए लीजिए प्रस्तुत है राग जय जयंती पर सरोद वादन। कलाकार हैं संजय कविराज, आपके साथ तबले पर हैं सुरजीत साहा।
1: दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनीटाइम इंडियन म्यूजिक। कंटिन्यूइंग द कॉन्सर्ट वी नाउ प्रेजेंट अ सरोद रिसाइटल। लिसन टू अ सरोद रिसाइटल इन द राग जय जयंती। आवर आर्टिस्ट इज Sanjoy Kobiraj. Accompanying him on the tabla is Surajit Saha.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग जय जयंती पर सरोद वादन सुन रहे थे। कलाकार थे संजय कविराज। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे सुरजीत साहा। ये आकाशवाणी कोलकाता केंद्र की भेंट थी। यह रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: You were listening to a sarod recital in the rag Jai Jayanti. Our artist was Sanjoy Kobiraj. Accompanying him on the tabla was Surojit Saha. This program was earlier recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel।
1: श्रोताओं नमस्कार, रागम 24/7 कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। सुनते हैं सितार वादन। कलाकार है सहाना बैनरी।

श्रोताओ, अभी आपने सुना सितार पर राग बिलास खनी तोड़ी। कलाकार थी सहाना बैनर्जी। आपके साथ तबले पर थे रविन्द्र कुमार शर्मा। और अब कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं सहाना बैनर्जी द्वारा प्रस्तुत सितार पर राग झिनझोटी। आपके साथ तबले पर है रामदास परसुले। तो आइए सुनते हैं सितार पर राग झिनझोटी, कलाकार सहाना बैनर्जी।

श्रोताओं, अभी आपने सुना सितार पर राग झिनझोटी, कलाकार सहाना बैनर्जी। आपके साथ तबले पर थे रामदास परसुले। ये आकाशवाणी पुणे केंद्र की निर्मित थी। रागम हर पल हर समय आपके साथ।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है पखावज वादन. कलाकार है महंत विजय रामदास. सबसे पहले आप पखावज पर चौताल प्रस्तुत करेंगे. आपके साथ सारंगी पर संगत कर रहे हैं विनोद कुमार मिश्र.

गणपतये एकदंत लंबोदर कर शोलत्र पुंड्र भाल लोचन विशाल धृत रुचिर माल वारे सुर पूजित कीर्ति अखंड तट दीन कृतज्ञ मुदित मन पद रज धा धग धग प्रज्वलित तेज धा कृतक कृतक गृंगधा गृंगधा धा धग धग प्रज्वलित तेज धा कृतक कृतक गृंगधा गृंगधा धा धग धग प्रज्वलित तेज धा कृतक कृतक गृंगधा।

जय शिव शंकर जय प्रलयंकर जय अभयंकर शीर्ष त्रिपुंड जयति करुणाक अंग भस्म अर्धंग संग धर गरल कंठ धर फणि धर शशिध जटाजूट धर मध्य गंग धर कर त्रिशूल धर जयति त्रिपुर वीर भद्र गण हर विदंत सुर सहित मुनीस मनीष करत जय धक धक धक जय जय मन मधारी धक धक धक ज्वाल माल आशुतोष त्रय नेत्र कृपा धर चरण शरण नित ध्यावत गौर वर्ण भुज केन्द्र माल अविनाशी काशी के बासी कैलाशी तुम पार्वती पति निति नित नम नम जय जय हर हर हर हर नित नित नम नम जय जय हर हर हर हर नित नित नम नम जय जय हर हर हर

हर क्रोधित भवकत ज्वाला कर मुंड माल नव चंद्र बाल चमकत त्रिशु कर बाज तमरु डमक डमक डम डम डम डम डम फड़कत अधर गरल पन्नक पुपकारत आग निरख निरख कांपत त्रिभुवन गंधर्व देव सुर नर मुनि दादा जल तल नव काहत शरण युगल पद पंकज नगपत शिखर कांप रहावत धरल धरल द्राम धरल धरल द्राम धरल धरल द्राम कुपित रुद्र गण दक्ष के घेरत संतावत तोरी फोरी मख खम्ब सत ही पुनि अम्ब अम्ब कहीं चौंती सीधा यज्ञ ध्वंस करि करत विपुल हुंकार उठत बारिद प्रलयंकर दाम निदम कत कड़कड़ार वज्र क्रांत धा कत्य टेटे टेटे धा कत्य टेक धा कटे क्रान क्रान क्रान क्रांत कृतकृता त्रिकृता क्रांत धा क्रांत कृतकृता त्रिकृता क्रांत धा क्रांत कृतकृता त्रिकृता क्रांत धा सती भस्मले अंग अंग लपटा बत शंग लोहित लोचन नाचत तांडव धा कृतक धुम कृतक तक्रां तक्रां धा कृतक धुम कृतक तक्रां तक धा कृतक धुम कृतक तक्रां तक्रां धान धिकट धा त्रिकृतिक धा

0: ये है रागम 24 घंटे सातो दिन DTH अनवरत भारतीय संगीत। अभी आप सुन रहे थे महंत विजय रामदास का बजाया पखावज पर चौताल। आइए अब सुनते हैं इन्हीं का बजाया पखावज पर ताल धमार। आपके साथ सारंगी पर संगत कर रहे हैं विनोद कुमार मिश्र।
1: धागिन धागिन त्रिकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृतकृ झूमत झुंड फेरत गया मूर्ति गजाननम तिरकृत धे धे धे धे।

गणपति बाल लाल विशाल रा पुंड्र धग धग ज्योति जग मग धधक धक धक धधक धक धक जेति जय शंकर सुमन एक दंत मूस वाहनम जय सकल कल्याण प्रद प्रभु धाकृत धुम कृत धक कृत धुम कृत गिरिग्रधा धुम कृत गिरिग्रधा धुम कृत गिरिग्रधा कृत कृत धुम कृत गिरिग्रधा धुम कृत गिरिग्रधा धुम कृत गिरिग्रधा कृत कृत धुम कृत गिरिग्रधा धुम कृत गिरिग्रधा धुम कृत गिरिग्रधा धा गिन धा

बम बम शिव शिव अगड़ बम डिम डमरू डमक डिम डिम डिम बाजत डिम डिम डिम डिम टिके डिम डिम धम कर धम कर धम कर धम कर धम कर धम कर धम कर धम कर बम बम उपकार करत फणि धर भुजंग सिर धर ति धर ति धर धर धर धवल धार गंगा छ बिचार ति धिर धिर धिर धिर धिर धिर धिर धिर धिर धिर धिर धिर धिर धिर जटा घटा मह चंद्र छटा गृह धकट धा धा गृह त्रिपुंड राजे मुंड मा वक्षस्थल साजे कर त्रिशूल चम चम चम चम कत भरत सबार मार मदमर शांत स्वरूप अनूप सकल सुर भूप मुकुट मणि ध्यान धरत कल्याण कर उतरत मुनिगन नित धा धा दिंता धा गृधान धगत टिक्र धकट धग त्रिकृत त्रिकृत त्रिकृत धान दान धगत टिक्र धान बम्भूला बम्भूला बम्भूला बम्भूला धान दान धगत टिक्र धान बम्भूला बम्भूला बम्भूला बम्भूला धान दान धगत टिक्र धान बम्भूला।

घिंद्रिंग धा धुरु दृग धिंग धा धुरु दृग धिंग धा धुरु दृग धिंग धा धुरु दृग धिंग धा धुरु दृग धिंग धा धुरु दृग धिंग धा धुरु दृग धिंग धा धुरु दृग धिंग धा धुरु दृग धिंग धा धुरु दृग धिंग धा धुरु दृग धिंग धा धुरु दृग धिंग धा धुरु दृग धिंग धा धुरु दृग धिंग धा धुरु दृग धिंग धा धुरु दृग धिंग धा धुरु दृग धिंग धा धुरु दृग धिंग धा धुरु दृग धिंग धा धुरु दृग धिंग धा धुरु दृग धिंग धा धुरु दृग धिंग धा धुरु दृग धिंग धा धुरु दृग धिंग धा धुरु दृग धिंग धा धुरु दृग धिंग धा धुरु दृग धिंग धा धुरु दृग धिंग धा धुर

अभी आप सुन रहे थे महंत विजय रामदास का बजाया पखावज पर धमार ताल। आप अपने कार्यक्रम का समापन करेंगे पखावज पर बजाए झपताल से। आपके साथ सारंगी पर संगत कर रहे हैं विनोद कुमार मिश्र।

आदर बदल दिग दिग कर कुठार काटत कुटिल त्रिकृत दाधा दा गणपति भग प्रथम पूज्य जग भाल लाल शुभ सुंद माल गले मुंड वीरा धागृत धुम कृत धा दिन दिन चतुरा नन चित धारे दीनन की दीनता निवारे दा दाता प्राता शंख चक्र कर गदा पदुम धारे विष्णु विपत्ति विनाशन तिधरे धुमकृत धुमकृत दा टकट धिकट दा बम बम शिव शिव अगड़ बम डिम डम रुदम डिम डिम डिम तक तक तक दा दा डिम डिम तक तक तक दा डिम डिम तक तक तक दा डमरु डिम डिम डिम तक तक तक दा दा डिम डिम तक तक तक दा डिम डिम तक तक तक दा डमरु डिम डिम डिम तक तक तक दा दा डिम डिम तक तक तक दा डिम डिम तक तक दूर का

ये है रागम 24 घंटे सातों दिन डीजीएच अनवरत भारतीय संगीत। अभी आप सुन रहे थे महंत विजय रामदास का बजाया पखावज पर झपताल। आपके साथ सारंगी पर संगत कर रहे थे विनोद कुमार मिश्र।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है। प्रस्तुत है विपुल कुमार राय का संतूर पर बजाया राग मेघ में आलाप जोड़ और झाला। विलंबित गत झपताल में और मध्य लय तीन ताल में निबद्ध है। तबले पर आपकी संगति की है विनोद पाठक ने।
2: This is the Ragam channel of All India Radio. We now present for you a santoor recital presented by Bipul Kumar Roy. He is accompanied on the tabla by Vinod Pathak. Bipul Kumar Roy first presents rag Megh, in which you will hear the alap, jod and jhala. The vilambit gat is set to jhaptal and the madhyalaya is set to teen tal.

0: अभी आप विपुल कुमार राय का संतूर पर बजाया राग मेघ सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी विनोद पाठक ने। और लीजिए अब सुनिए राग मालकौंस। मध्य लय और द्रुत गत तीन ताल में निबद्ध है। तबले पर आपकी संगति की है विनोद पाठक ने।
1: यू जस्ट हर्ड राग मेघ। विपुल कुमार रॉय नेक्स्ट प्रेजेंट्स राग मालकौंस, इन विच यू विल हियर द मध्यलय एंड द्रुत गत सेट टू तीन ताल।

0: अभी आप विपुल कुमार राय का संतूर पर बजाया राग मालकों सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी विनोद पाठक ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: विद राग मालकोंस वी कम टू द एंड ऑफ द संतूर रिसाइटल प्रेजेंटेड बाय श्री विपुल कुमार रॉय। ही वाज अकंपनीड ऑन द तबला बाय श्री विनोद पाठक। दिस प्रोग्राम वाज अ प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: श्रोताओ नमस्कार, रागम 24/7 DTH चैनल पर भक्ति संगीत के कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भक्ति संगीत कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं प्रतिभानुजी देशपांडे की इस भक्ति रचना से, जिसे गाया है अनुराधा मराठे ने।

अनुराधा मराठे ने गाई प्रतिभानुजी देशपांडे की ये भक्ति रचना अभी आपने सुनी। कार्यक्रम आइए अब सुनते हैं संत बहिणाबाई रचित ये भक्ति रचना, जिसे गाया है रघुनंदन पंशीकर ने, स्वरबद्ध किया है रविन्द्र खासनीस ने।

रघुनंदन पणशीकर के स्वर में संत बहिणाबाई की ये भक्ति रचना अभी आपने सुनी। संगीतकार थे रविंद्र खासनीस। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं एक पारंपरिक भक्ति रचना जिसे प्रस्तुत किया है वीणा भक्ति मंडल ने।

वीणा भक्ति मंडल द्वारा प्रस्तुत एक पारंपरिक भक्ति रचना अभी आपने सुनी। कार्यक्रम की अगली भक्ति रचना है श्रीकांत पारगांवकर के स्वर में, रचयिता हैं संत तुकाराम महाराज।

संत तुकाराम महाराज ने रची ये भक्ति रचना अभी आपने सुनी श्रीकांत पारगांवकर के स्वर में। भक्ति संगीत के कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं पुष्पा राय के स्वर में संत निळोबा राय की ये भक्ति रचना।

संत निरोबा राय की भक्ति रचना अभी आपने सुनी पुष्पा रानड़े के स्वर में। कार्यक्रम की अग्रिम भक्ति रचना है मनोहर सबनीस और सहकारियों के स्वर में।

मनोहर सबनिस और सहकारियों ने गाई ये भक्ति रचना अभी आपने सुनी। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं एक हिंदी भक्ति रचयिता है नारायण स्वामी, सुधा मल्होत्रा ने इसे गाया है और स्वरबद्ध किया है मधुकर गोळवलकर ने।